Buddhika Hasa Vahegu Vahegu Vahegu वाहिगुरु कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो जब आपा पर का मिट गया